मित्र हुंदा ही होए जिहड़ा मनुख दा भला लोचे, जिहड़ा मित्र मिले ते बुरे पासे लै जा, भला फिर और दुश्मन दी की लोड़। जिहड़ा अखौती मित्र मिले, मित्रता दे नां थले बुरे पासे लै तुरे, बुराइयां वाले पासे प्रेर लै जा, गलत कम्मां वाले पासे लै तुरे, या जेड़े मित्र दे आया जीवन दा कीमती समा आ जाई तुरिया चला जा, गलत गल्लां विच, निंदा चुगली विच, गलत खेडां विच, गलत कारियां विच मनुख दा कर्म भ्रिष्ट हुंदा चला जावे, वो मित्र नहीं दुश्मन है। क्योंकि जो कर्म असी करने ने उन दा फल साडे सामने होणा, अज नहीं कल नूं, ऐस नहीं अगले जन्म नूं, साडे कीते कर्म साडे सामने आ जाणे। ते जेड़ा बंदा गलत कम्मां दी प्रेरणा करता है, उहदे नाल वड्डा दुश्मन होर कौन होवे। पर मनुखे भुलेखे च पिया होया है, जिहदे नाल जी परच जावे, जेड़ा कोल बह के चार गल्लां करे, सुने सुनावे, उहनूं असीं मित्र समझदे हां। हालांकि साहिबां ने पावन

विसर गया है मरण, तेनू विसर गया जिस वाहिगुरु ने संसार ते भेजिया है उसने सदना भी है, जिस वाहिगुरु ने तेनू अमोलक स्वासा दी पूंजी हीरे लाला तो महंगे तेरे स्वास, ते उसने हिसाब भी तो मंगना, उन्हां स्वासां दे लालां नाल कितने कु तू नाम दे लालां दे वर्ज कीते हन उथे दा लेखा पुछया जाणा, इसलिए सानू चेता करा रहे हन धन गुरु नानक पातशाह कहंदे हन विसर गया है मरना चेता कर, मालक ने सदना तैनू।

नाम रूपी अमृत पीता है। ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा। ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा। किसे माड़े पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या इसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा उथे भी तेन कोई कोल ना बहन देवेगा। उचारण करो श्री वाहेगुरु। इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया।

कुछ पछतावा कीता कि हे निरंकार, मैं संसार ते आके जो कुछ करना सी ओ कीता नहीं। मैं मोह माया दी नींदर विच सुता रहा, मेरा सौ जागे हौन इस बार सोवा। इस संसार दे पंज झगड़िया विच पै के मैं सारा जीवन अपना एवें व्यर्थ गवा लिया। सेजे रमत नैन नहीं पेखो। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू तो मेरे हिरदे रूपी सेज ते जाग रहे, पर मैं मोह माया दी नींदर विच सुता ही रहा, कदे तैनू वेखण दा जतन ना कीता, कदे तेरे चरणां विच जुड़ के ओ महान रस ना मान सकिया, जिस नाल मेरा लोक परलोक सौरदा सी। इसलिए मेरी मत बहुरी

पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, संसार वल निगाह मार के वेखिए, बस इना पंजा झगड़िया विच ही मनुख सवेर तो शाम तक और रात तो सवेर तक इना ही झगड़िया विच पिया होया। इसनू परमेश्वर दा सिमरन भोली गया। इसे लई गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हन, अब मैं कौन उपाय करूं, जे बिद मन को संसा चूके पवनिद पार परों, जन्म पाए किश पलो ना कीनो ताते अधिक डरो। इसलिए कबीर जी कहिंदे हन, भाई सुख तो उन्हां ही पाया है जिन्ह ने जपया श्री वाहिगुरु। तो इसलिए झूठी माया सब जग बांधिया, झूठी माया ने तो सारे जग नू बनया, पर रब दे प्यारे अमृत वेले जाग के नाम जपदे हन, सेवा सिमरन करदे हन, अपना जीवन सफल करदे हन। सेजे रमत नैन नहीं पेखो, ए दुख कांस्यों कहोरे, मेरी मत बौरी मैं राम बिसार्यो, किन बिद रैन रहो रे, बाप साब का करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई के जब संग होती तब हूँ नाहे प्यारी, कहत कबीर पंच को झगड़ा झगड़त जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया। कबीर जी कहंदन, मैं राम रमत

इस महिमा विच मन बिरती एकाग्र करके सुरत द्वारा सतगुरु के चरणों ते सिर रख दिता है, चरण फड़ ले और महिमा कर रहे हो।

शरीर हल सतगुरु के चरणों के चाहते शरीर निर्भर हो सिमरन करद्या दुखों का भार उठ गया जिमें शरीर हल्का।

अंदर आवाज नहीं आ रही। रसना सिमरन सूक्ष्म हो गया, रसना जप रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, जिमें कह लो खामोश आवाज। वो आवाज जेड़ी एक कन नहीं सुन दे, जप रहे हो ते एहसास कर रहे हो कि शरीर दे अंदर गूंज हो रही। सूक्ष्म सिमरन सूक्ष्म हो गया, सिमरन हौली हो गया लेकिन अंदरों पावर वध गई, अंदरों पावर वध गई, अंदरों गूंज प्रति

नूरो नूर हुंदी जा रही है। सिमरन दे नूर नाल ए मिट्टी भी चमक गई है, चमक गई, चमक।

उम्र सुना भी बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए, होंठ भी बंद हो गई, रसना भी बंद, जीभ तालू नाल लग गई, जिमें जड़ हो गई हो गए, जड़ हो गई जीभ, हुण सिमरन होर भी सूक्ष्म हो गया, जीभ नहीं हिल रही, रसना दे अंदर दियां सूक्ष्म नाड़ियां जेड़ियां बाहर नहीं दिसती, अंदर उन्हां नाड़ां विच तड़कन हो रही।

जप रे, रोम रोम जप रे, रोम रोम जप रे। अंदर पुकार पैदा हो रही, अंदर प्यास।

हर हर नाम गोविंद, जप मन हर हर नाम गोविंद। बड़ पागी गुर सतगुरु पाया, गुण गावत परमानंद। जप मन सतनाम सत सतनाम।

चार पाप दो सिंह कुंकुम अब कैसे गुन गई जप मन सतना। चार पाप दो सिंह कुंकुम अब कैसे गुन गई उठ तो बैठ ठेंगा पर कपित कमूंडल के।

सदा सतनाम। हलत पलत मुख उज्जल हुई है, जय त्याई हर पुरख निरंजना, जय हर सिमरन भया, तै अपार गत कीनी, बड पागी हर जपना, बड पागी हर जपना। आखिरी पंक्ति है,

नाम मैनू अपना नाम दे ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र शब्द।

कट कट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी ज़ियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उथे मिल जावे। कबीर हज काबे हो जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा कीता। कहन लगे कबीर किथे चले है? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए मेरे नाल झगड़ा कीता भई लोगां दी तां मत मारी गई है तेरी भी।

यूं ऐसे दंत कलेश में खपियो संसारा कह बिन सतगुरु को नहीं पहले प्रणहारा गह ऐसे खड़ग